के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफन्ड गरी एक नम्बर गुणाउनु परेको छ? यदि त्यस्तो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861237744 र 9183577।

0: お前ね、
1: 文字文字文字
0: おいでかおってやれ、ちゃちゃちゃちゃちゃ、
2: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे अरे बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू चार रुपया लिखवा ले तू का अरे अरे
2: जिगर पलट